0: का सौदो चट्टान चट्टुंग झरे मेरा जै था दुख कहीं नहीं सारा त्यस्तै भरे
1: आधार स्वर्ग थम्पानी छ आधार स्वर्ग विदो मैले बाँच्ने।